0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ల సమయం 6 గంటలకు వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాలు హిందీలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే నవీన్ సక్సేనా. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है. श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं.

0: दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार उड़ीसा उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण

0: कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ई राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
6: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और

0: सरपंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे आप, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
0: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
2: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
0: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
3: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
4: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
3: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस

0: योजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमरीकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शत प्रतिशत शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं का।

शफ़क़त अमानत अली की आवाज़ें आप सुन रहे थे फिल्म मुल्क में। शकील आजमी की रचना थी, अनुराग साकिया की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म राजी में आपने सुना हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन की आवाजें। गुलजार के बोल थे शंकर एहसान लॉय की तर्ज थी श्रोता, और यही थी आज के कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो इसी उम्मीद के साथ चित्रलोक कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

0: కాల కపుడ పీనునకు మై కిట్టి బారు బోల నాది ఉజిల కపుడ పీనునకు కాల కపుడ పీనునకు ఉజిల కపుడ పీనునకు.
1: दोस्तों शबाना आजमी हिंदुस्तानी फिल्मी पर्दे की वो अभिनेत्री है जिसने अदाकारी के वो जौहर पेश किए हैं जिन्हें सिर्फ बेमिसाल ही कहा जाएगा. ये बात जग जाहिर है कि वो एक उम्दा शायर कैफिया आजमी और इप्टा की जानी मानी कलाकारा शौकत आजमी की बेटी है, मशहूर सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी की बहन और गीतकार शायर जावेद अख्तर की शरीक हयात है.

दोस्तों 1972 के आसपास FTII से शबाना आजमी ग्रेजुएट हुई और अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए ही एक्टिंग की दुनिया में जलवागर हुई। अब्बास साहब की एक फिल्म फासला में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली भूमिका की, हालांकि ब्लेज फिल्म्स की पेशकश अंकुर पहले रिलीज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं शबाना आजमी द्वारा अभिनीत एक फिल्म अर्थ का ये बड़ा ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों, शबाना आजमी ने कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है। उनमें से प्रमुख हैं श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, मंडी, सुस्मन और अंतरनाद। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन के साथ खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, ये फिल्में उन्होंने की। सईद मिर्जा की फिल्म उन्होंने की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। गौतम घोष की पार उन्होंने की थी, सई परांजपे की स्पर्श और दिशा, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म अवतार के इस गाने के साथ।

दोस्तों, शबाना आजमी द्वारा अभिनीत फिल्मों की एक फहरिस्त पर हम जब नजर डालते हैं तो पता चलता है कि किस किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं। 1988 में मैडम सोजार्ट्स का, 1992 में आई थी सिटी ऑफ जॉय, 1993 में इन कस्टडी, 1993 में ही एक और फिल्म आई थी उनकी सन ऑफ द पिंक पैंथर, 1996 में फायर, 1997 में साज

1998 में अर्थ, 1999 में गॉड मदर, 2002 में उनकी फिल्म आई थी मकड़ी, तहजीब आई थी 2003 में, 2004 में मौनी रागाज, 2005 में 15th पार्क एवेन्यू, इसी साल यानी 2005 में आई थी वाटर बॉर्न, 2006 में उमराव जान, 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड।

इसी साल यानी 2007 में लायंस ऑफ द पंजाब प्रेजेंट्स, 2008 में उनकी फिल्म आई थी सॉरी भाई, और 2010 में इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ। शबाना आजमी मटरू की बिजली का मंडोला इस फिल्म में भी नजर आई थी। दोस्तों, शबाना आजमी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शबाना आजमी पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए शोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने,
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में,
0: याद रहे ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर.
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन.
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और STT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजल्टा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है।

घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मन भी कैसी अबूझ पहेली सा है ना, जैसे ही किसी प्रिय की भावनाएं इसे छूती हैं, तो दृश्य यानी कि जो सीन है वही का वही रहता है, पर सब कुछ बदल जाता है। अब आंखें

0: बरा नमस्कार साथियों, ये मन भी कैसी अबूझ पहेली सा है ना। जैसे ही किसी प्रिय की भावनाएं इसे छूती हैं, तो दृश्य यानी कि जो सीन है वही का वही रहता है, पर सब कुछ बदल जाता है। अब आंखें केवल देख नहीं रही होती, वो प्रतीक्षा बनकर रास्ता देख रही होती हैं। अब कान केवल सुनते ही नहीं, वो हर आहट पर चौंक भी रहे होते हैं। और मन वो तो जहाँ होता है वहाँ टिकता ही कहाँ है, या तो किसी बीते पल के फूल पर बैठा उसका रस उलीच रहा होता है, या फिर आने वाले पल की कल्पना में डूबा ढेर सारी अनकही बातों की बंधनवार बुन रहा होता है। तो जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। अरे वाह, इंतजार हुआ खत्म, अब सुनते हैं हमारी पहली पहली कॉलर को और जानते हैं कहाँ से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसी है मैडम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया,
1: मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छी हूँ।
0: तो आप बनती है हमारी पहली पहली सखी जिनका कॉल लगा है।
1: हो रही हूं।
0: तो पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनी अली अंसारी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गाजीपुर जिले से, मखदुमपुर मेरा गांव का नाम है।
0: अच्छा
1: जी, मुझे गाना सुनना है, ये जो चिल्मा ने दुश्मन है हमारी। मैं मुझे सखी सहेली सुनना बहुत पसंद है, मेरा बहुत तमन्ना था कि एक बार मेरी कॉल लग जाए।
0: तो आपकी कॉल तो लग गई है, पर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में भी तो बताइए। आपका गाना तो हम आपको सुनवाएंगे ही जरूर।
1: मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे घर पर रहती हूँ, तो शेरो शायरी की शौक है, लिखती हूँ।
0: लिखती हैं आप? शेरो शायरी, एक छोटी सी आप एक लाइन दो लाइन सुना सकती हैं हमें अपनी?
1: अच्छा,
0: शायरी की
1: सुनाऊं?
0: सुनाइए।
1: सुना रही हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मेरे खूबसूरत से चेहरे का दीदार कौन करेगा, तुम रहेगा तो मुझसे प्यार कौन करेगा।
0: उफ,
1: कुछ तो कशिश है मेरी आंखों में, वरना मेरे आंखों को नशा का जाम कौन करेगा।
0: ओह ओह, क्या बात है, क्या बात है, सच में बहुत बढ़िया।
1: मैं ना खूबसूरत नहीं हूँ, आज खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी जिस सहेली से बात कर रही हूँ मैं, उनकी हो सकती है खूबसूरत।
0: नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत है, आपकी बातों से लग रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है शायरी करते हैं लेकिन दूसरे की तारीफ करते हैं, आज आपकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद की तारीफ में एक शायरी लिखी है। और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम अंकिता राजेश तिवारी बोल रहे हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से। हाँ
0: अच्छा, तो बताइए, आज गणपति का उत्सव चल रहा है, तो आप गणपति लेकर आई घर में?
1: हाँ लेकर आए ना गणपति।
0: तो उनकी सेवा चल रही होगी ना? खूब अच्छा सा
1: हाँ
0: क्या भोग लगाया आज आपने उनको?
1: आज हमने उकड़ी के मोदक का भोग लगाया। हेलो
0: अरे वाह।
1: सहेली।
0: और बताइए, आप
1: हाँ
0: क्या करती हैं?
1: मैं अभी कॉलेज करती हूँ, बीकॉम।
0: बीकॉम में है। और
1: हाँ
0: गणपति बप्पा खूब सारी सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आए, इसी
1: हाँ
0: ही हम प्रार्थना
1: धन्यवाद।
0: करते हैं। और
1: हाँ
0: बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: देवा देवा गणपति देवा।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: गाना।
0: प्यारा सा गीत है ये। तो बहुत अच्छा सा ये गाना आपके पसंद का हम सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते। तो बताइए आप जरा पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: जी, मेरा नाम कल्पना मनोहर है और मैं भूली गांव से बोल रही हूँ,
0: अच्छा,
1: वाशिम से। हाँ,
0: वाशिम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताइए आप क्या करती हैं कल्पना।
1: जी मैं आंगनवाड़ी मदद हूँ।
0: अरे वाह, आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि आपका जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कार्यक्रम है विविध भारती में वो कौन सा है।
1: ये वो हेलो पिटारा, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, वो सब
0: अच्छा
1: मैं रेडियो पे सुनती हूँ।
0: अच्छा ये सारी चीजें आपको सुननी अच्छी लगती है ना।
1: हाँ सब
0: तो और क्या करना अच्छा लगता है रेडियो सुनने के अलावा आपको,
1: कि मुझे बच्चों को पढ़ाना और
0: यानी बच
1: ड्राइंग
0: हाँ
1: करना।
0: अच्छा आप आंगनवाड़ी में काम करते तो आप वहां पर बच्चों को

0: पढ़ाती हैं?
1: हाँ, मेरा बच्चा भी 6 साल का मेरे साथ ही पढ़ता है।
0: अच्छा, तो आप उसको भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आज कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगी आप हमें बताइए?
1: तारों का चमकता चेहरा हो,
0: तो ये
1: फूलों की
0: गीत,
1: हंसने की वादी हो।
0: अच्छा तो ठीक है, हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए कौन बोल रही हैं आप और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी मैम नमस्ते, मैं कानपुर कल्याणपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा, आप क्या करती हैं आप?
1: जी मैम मैं जॉब ही करती हूँ, मेरा बुटीक है खुद का।
0: अरे वाह।
1: जी मैम, तो मेरा सारा समय उसी में बीतता है और मैं आपका कार्यक्रम मैम बहुत मतलब मन लगा के सुनती हूँ।
0: अच्छा, मन लगा
1: अपने काम के जैसे अपने काम में मन लगा के सुनते करते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम भी मन लगा के सुनते, इतना अच्छा लगता है। हेलो सहेली और गीत माला ये सब तो मेरे बहुत ही मतलब पसंदीदा, हम भूल नहीं सकते समय की, ये समय मतलब चालू हो गया तो बस रेडियो चालू होना चाहिए।
0: ये तो सही बात है। और दूसरी चीज ये बताइए, आप जो करती हैं, आपका ये जो बुटीक चलाती हैं, तो उसमें आप मतलब किस तरीके के कपड़े रखती हैं? सलवार
1: जी मैम मैं
0: लेडीज।
1: हाँ मैम जी मैम मैं लेडीज कपड़े तैयार करती हूँ।
0: अच्छा, तो आजकल

0: तरह के कपड़े ट्रेंड में है, जैसे गाउन भी चल रहे हैं तरह तरह के, है ना, और
1: जी
0: सलवार सूट
1: मैम,
0: तो चल ही रहे हैं, प्लाजो
1: जी
0: वगैरह काफी
1: मैम,
0: चल रहे हैं ना।
1: हाँ प्लाजो भी चल रहे, गाउन भी चल रहे, शरारा भी चल रहा है
0: तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको बनाने के लिए मतलब आता है आपके पास ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा कौन सी
1: मैम।
0: बनवाई
1: इस
0: जाती
1: समय तो सब लोग पैंटी सूट पहन रहे हैं ज्यादा, और
0: है?
1: साड़ी की जो ड्रेसें आ रही हैं तो साड़ी की ड्रेसें उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से सिलवाते रहते हैं।
0: हाँ, आजकल ये भी ट्रेंड में ना, कि जो पुरानी आपकी बनारसी तरीके की जो साड़ियां हैं उसके नए नए तरीके से आप शरारे बना सकते हैं ना, या आप
1: हाँ
0: सूट सिलवा
1: बहुत अच्छी
0: सकते
1: अच्छी
0: हैं।
1: ड्रेसें आ रही हैं, तो वो साड़ी से लेडीज से आजकल अपनी जो साड़ी पुरानी रखी हुई है बनारसी, तो उनसे काफी अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार करवा रही हैं।
0: बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: तो मैम प्रेम पुजारी का गाना है रंगीला रे तेरे रंग में।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: परजाना सफी शेख बोलते हैं ऊन पतिया गुजरात सूरत।
1: अरे वाह, तो बताइए फरजाना जी आप क्या करती हैं?
0: हम घर में ही है, दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई, एक बेटी को दो बेटी है।
1: अरे वाह क्या बात है।
0: और एक बेटी को एक बेटा और बेटी है।
1: यानी आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं पूरे, अब आप आराम से है ना रेडियो सेट के पास बैठ के गीत सुन सकते हैं ना।
0: हाँ, अब बेटे की शादी हुई है, अभी 5 महीना खत्म हुआ, 6ठा महीना चालू है।
1: अरे वाह, यानी कि बेटे की भी शादी होगी, यानी आप घर में बहू भी लेकर आ गई अब है ना।
0: हाँ, बहू भी MP से लाए, मध्य प्रदेश से, यहाँ बुरहानपुर से।
1: आप एक सास के रोल में आ गई हैं।
0: चंदन का नाम, उनका नाम भी फिरोजा है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और मेरी बेटी सायरा और सबाना।
1: हाँ बहुत अच्छा।
0: और बहू है तो नीलोफर और बेटा है तो सब्बीर।
1: अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो।
1: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना है, मुझे भी सुनना है।
0: क्योंकि मेरी बेटी है ना बिजली वाली, उनको बहुत पसंद है।
1: अच्छा, अरे
0: वो मोबाइल में रखेगी ना, वही गाना रखेगी, उनके पापा के लिए भी मेरे लिए भी अच्छा लगता है उसको।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी है आपकी। तो चलिए आपके साथ साथ मैं भी सुन लेती हूँ ये गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं शानू बोल रही हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा शानू जी, आप भोपाल से बोल रही हैं यानी कि आप मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। तो बताइए क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए।
1: जी मुझे, मैं तो घर में ही रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ और बच्चे हैं, बस खाना बनाना यही पसंद है और विविध भारती सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: विविध भारती पे आपको कौन सा कार्यक्रम है जो बहुत ज्यादा पसंद है?
1: मुझे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आज की फनकार बहुत अच्छा लगता है, आज के मेहमान, पिटारा के अंतर्गत सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सखी सहेली हेलो सहेली भी पसंद है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको पसंद है। अब ये बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरे दो बच्चे तो बड़े हैं और एक थोड़ा लेट हुआ था तो वो 4 साल का है अभी। और हम अपनी बात भी कहना चाहेंगे विविध भारती, जैसे हमें
0: बिल्कुल,
1: सबकी आवाजें पसंद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना मुझे रफी साहब की आवाज में सुनना है, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले।
0: अरे क्या बात है, ठीक है आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। तो कौन सखी बोल रही है हमारी?
1: जी। मेरा नाम प्रमिला खन्ना है जी।
0: अच्छा, प्रमिला खन्ना जी।
1: मैं हरियाणा से बोल रही हूँ
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं प्रमिला जी?
1: जी। मैं सिलाई करती हूँ
0: अच्छा, तो बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: जी। मेरे हस्बैंड है और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है
0: अच्छा, बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: जी। लड़की 13 साल की है, लड़का 11 साल का है।
0: अच्छा, यानी बच्चे भी छोटे ही हैं। तो उनके साथ में थोड़ी सी बहुत रहती होगी ना, कि उनको भी संभालना, घर को भी संभालना और साथ में सिलाई का काम भी करना, सब कुछ संभाल लेती हैं आप?
1: वैसे तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद फिर तो मैं खाली ही रहती हूँ, इस तो मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ
0: अच्छा, आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी। मुझे सोनू मैवाल फिल्म का गाना सुनना है।
0: अच्छा बिल्कुल, हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हॅलो सहेली.
1: अरे मॅम नमस्कार, मी संभाजीनगरचं बात करणे निर्मला कर आहे.
0: अच्छा, आप छत्रपती संभाजी नगर से बोल रही हैं निर्मला जी.
1: गाणे बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं हमारे.
0: आपको गाने अच्छे लगते हैं सुनने?
1: बहुत अच्छे लगते हैं मुझे.
0: तो जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें आपको जो भी गाने सुनवाए जाते हैं सब पसंद है ना आपको? तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गणपति का कौन सा गाना सुनाने वाले?
0: तो ठीक है, हम ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं गणपति जी का.

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आप कौन बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए।
1: मैं साची सूरज चल्लारे बोल रही हूँ।
0: अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं?
1: और यवतमाल से।
0: यवतमाल से। साची, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आवाज एक छोटी सी बच्ची की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा
1: हाँ
0: है? तो बताइए, आप पढ़ती हैं
1: हाँ
0: तो आप कौन सी क्लास में?
1: छठी क्लास में।
0: ओ, सिक्स्थ में? अभी आप छठी क्लास में, यानी कि आप बहुत छोटी सी हैं। आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
1: हाँ
0: तो आप रेडियो पे क्या क्या सुनते हैं?

0: सुनती हैं?
1: मम्मी के साथ सुनती हूँ।
0: मम्मी के साथ सुनती हैं? क्या सुनना अच्छा लगता है? वही जो मम्मी सुनती हैं या आपको भी कोई अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनना?
1: सखी सहेली भी बहुत अच्छा होता है।
0: सखी सहेली अच्छा लगता है आपको? जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसमें।
0: बातें करनी अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ।
0: अच्छा, यानी कि सांची भी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ना।
1: हाँ।
0: तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्कूल में?
1: हाँ।
0: मुझे लग ही रहा था कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है कि डांस करना अच्छा लगता है?
1: मुझको गाना
0: गाना अच्छा लगता है। तो चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं ये तो बताएंगी?
1: आपके मन से कोई भी।
0: ठीक है, फिर मैं अपने मन से सुनवाती हूँ सांची के लिए खास तौर पर ये गीत। अच्छा लगेगा सांची को।

0: फिरोजा जी आप बोल रही हैं कश्मीर से, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी जगह से आप बोल रही हैं बहुत अच्छी जगह सच में। तो बताइए आप क्या करती हैं फिरोजा जी?
1: जी बस मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का ही काम करती हूँ।
0: हाँ।
1: दो बच्चे हैं मेरे, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ।
0: अच्छा, तो बच्चे छोटे हैं?
1: और साथ साथ विविध भारती चलता रहता है, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से।
0: ये तो सबसे अच्छी बात है आपकी। तो बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है।
0: मतलब बहुत परेशान करते होंगे, शैतानी करते रहते होंगे पूरे दिन घर में, है ना?
1: हाँ, अब क्या करें, लेडीज का काम ही यही है अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना,
0: बिल्कुल, अच्छे से उनको पढ़ाना
1: घर
0: लिखाना,
1: संभालना।
0: घर संभालना, सच में।
1: जी
0: और बहुत बड़ा काम है ये, मतलब आप जॉब करने जाते
1: बहुत
0: हैं,
1: ही।
0: लोगों को
1: हाँ,
0: लगता है
1: और
0: वही चीज बड़ी है।
1: ये काम नजर भी नहीं आता है।
0: जबकि
1: अगर
0: ये
1: ऐसे
0: सबसे
1: जैसे
0: जरूरी काम है।
1: कि हाँ, अगर कि मर्द लोग जैसे काम करते हैं, उनका काम दिख जाता है, वो ऑफिस संभालते हैं, फिर पता चलता ही नहीं ऑफिस है, घर में जितने काम करेंगे ये नजर ही नहीं आते हैं।
0: ऊपर से कहा जाता है आप करते ही क्या है घर पे, जबकि अगर घर पे काम करना पड़ जाए ना तो बस पता चल जाएगा कितना काम होता है दिन भर का पूरा, और साथ ही
1: बहुत
0: बच्चों को भी
1: ज्यादा मैम।
0: संभालना ना, बहुत बहुत बड़ा काम है ये।
1: हाँ
0: आप विविध भारती आप सुनती हैं, तो विविध भारती का कम से कम इतना तो एक योगदान रहता होगा ना कि आपका जो काम है पूरे दिन भर का थोड़ा आसान कर देता होगा, है ना?
1: बहुत ज्यादा, कई सालों से वही मैं बोल रही हूँ, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब शादी से पहले मायके
0: हाँ
1: में सुना करती थी,
0: अच्छा,
1: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे, सखी सहेलियाँ हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं, या
0: अरे
1: फिटार
0: वाह।
1: है में जो भी एपिसोड आते हैं, हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का।
0: ये तो
1: अभी भी
0: बहुत,
1: सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर
0: हाँ
1: भाग दौड़ में
0: नहीं,
1: लगा
0: बच्चे
1: देते
0: छोटे हैं
1: हैं।
0: आपने बताया, 5 साल के 2 साल के तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना,
1: बहुत
0: सच में।
1: ज्यादा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती पे आज हेलो सैली में मेरा पहली बार फोन लगा है, इतने सालों से, मेरे
0: हाँ
1: ख्याल से 20 सालों से,
0: अरे
1: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम
0: क्या
1: में।
0: बात कर रही
1: एक बार
0: हैं।
1: विविध भारती में मैंने बात की है, वो है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा यानी कि आपकी, चलो
1: हाँ
0: बात तो हुई, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल इतना लंबा अरसा आपने
1: हाँ
0: सोचिए
1: बहुत
0: लगाया है
1: ज्यादा
0: फोन
1: टाइम है।
0: नहीं सच में, सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी गाने के बोल है, इस मोड़ से जाते हैं
0: हाय
1: कुछ
0: हाय,
1: मुश्किल
0: क्या
1: कदम
0: बात है,
1: रहा।
0: बहुत बहुत सुंदर,
1: हाँ
0: बहुत सुंदर गीत है ना, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें हमारी मुलाकात हो जाए, है ना?
1: हाँ आप
0: चलिए
1: आइए
0: सुन
1: ना कश्मीर, हमसे
0: बिल्कुल
1: मिलके
0: बिल्कुल
1: जाइए,
0: बिल्कुल, कभी
1: आप
0: आते
1: आइए
0: हैं,
1: और फिर देखिए कितनी सुंदर जगह है, हर
0: सच
1: मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
0: नहीं, कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी
1: हाँ
0: पसंद का एक प्यारा सा ये गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, आप
1: जी
0: कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ, कश्मीर से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम अफरोजा है।
0: अच्छा।

आज की हेलो सहेली कार्यक्रम का समय पलक झपकते ही तेजी से मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल गया, लेकिन हमारे मन की हथेली पर अपने सुनहरे चमकते निशान छोड़ गया है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं, आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002 4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 4002 4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867 0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं।

0: कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल का और साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोले। विद भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।
2: उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने अजनबी सा खड़ा था। लंबी सांस भर बहुत संयत मन से उसने कंधे पर टंगे झोले में से चाबी निकाली और ताले में डालकर घुमाई। ताला ढीठ सा अड़ा रहा। इसी दशा में टंगे टंगे ये ताला भी उम्र कैद जितनी लंबी अवधि काट चुका था। यूं दरवाजा जोर से धकेलने पर शायद ताला खोलने की जरूरत ही न पड़ती, मगर ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक आंख बंद कर उसने ताले की मोरी के भीतर झांकते हुए चाबी घुसेड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। कड़ कड़ की आवाज के साथ कराहता वो ताला आखिर होश में आया तो जैसे नींद से जागकर अविश्वास से पूछने लगा,
3: कौन हो भाई? यहाँ तो बरसों से कोई आया ही नहीं है।
2: तो क्या ओमी भी कभी आया नहीं मेरे पीछे? वो हल्के से बुदबुदाया।
3: ओमी? कौन ओमी?
2: दरवाजा भी अब तक बूढ़ा हो चुका था और उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रह गई थी। खैर, उसने दरवाजे को जोर से धकेला तो बरसों की जमी धूल उस पर छिटक कर गिर पड़ी।
3: चलो, किसी ने गले लगाकर स्वागत तो किया।
2: वो हंसा तो धूल मुंह में घुस गई और वो खांसने लगा। भीतर का

0: दृश्य जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। लंबे अरसे से एक ही स्थान पर रखी चीजें पड़ी पड़ी जम चुकी थीं। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ पड़ी धूल की मोटी परत से उसका रंग रूप ही बदल चुका था।
1: मैं किसी गलत घर में तो नहीं आया ना? ये मेरा ही तो घर है ना? किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? ओमी,

बाथरूम भी यही है। हाँ यही तो है बाथरूम, यानी यानी घर तो मेरा ही है। बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया। यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था। वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा, नालायक यही कहीं बैठा होगा। उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी हुई मिली। शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका, और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एकटक पंखे को देखता रहा, भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा।

आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा, ओह इतनी देर हो गई। मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था, अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा, अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो ना ओमी, ओमी ओमी सुन रहे हो ना, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई, याद आई कि ओमी को तो पता ही

ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा, ओमी आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो, बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूँ। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घिया कद्दू खा खा कर रुकता चुका हूँ। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा, जलती बत्ती देखकर दौड़ा चला आएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूँ। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहाँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजायाफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूँ मेरी आवाज उस तक पहुँचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कने रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे, आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था। उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार, गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ, पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार, ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ, मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूं तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी, सुर और शब्द की, आवाज और अर्थ की।

0: तुझ में हूँ।
1: उधर गीत की सहेलियां भी कहाँ कम थी, हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती। हाँ सच में ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूँ। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूँ और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूँ, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती, और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक झनकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे मीठे मीठे सुर।

0: उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता, कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
1: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूँ और हीरो भी मैं भी।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे, कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंग में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा, वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

देगा। वह यह सब कतई दोहराना नहीं चाहता। वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, 100% ओमी की। ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकराकर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी ओमी ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी? ओमी कहाँ है तू? कहाँ छिपा है ओमी? देख, सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी, और मैं यहाँ दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी ओमी ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उसे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखे।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहाँ कोई कभी आया था और वो कहाँ रहता है। मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूँ। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहाँ रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों न जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं। जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, जेलर साहब के पास जाता हूँ, वहीं जाता हूँ मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। जेलर साहब ही एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था, मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई इससे मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि यह हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है। जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है ओमी। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हंसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसके दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी। ओमी, ओमी, ओमी, ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ। हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब

अब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा। यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई, तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई। जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को, जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं। उसमें न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूद सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब, पता नहीं, पता नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप अयाज़ अहमद से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियाँ। हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और उन्हें अलाई बलाई सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। हाईकोर्ट ने बीजेपी और बीआरएस कायदीन की अर्जियों पर समाअत के दौरान स्पीकर के अहकाम को तस्लीम ना करते हुए खैरताबाद एमएलए दानम नागेंद्र को नाअहल करार दिया है। रियासती वजीर पोंगोलटी श्रीनिवास रेड्डी ने 22 ए अमलाक से मुतालिक तनाज़ात को तेज़ी से हल करने के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने अहदेदारों को हिदायत दी कि गोदावरी पुष्कर आलू के इंतजाम आइंदा अप्रैल तक मुकम्मल कर लिए जाएँ। उन्होंने कहा कि इंतजाम कुंभ मेले की तर्ज पर किए जाएँ। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेलंगाना के लिए 2 लाख देही मकानात मुख्तस किए जाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया और मकानात की मुनसिफाना तकसीम पर जोर दिया। अब खबरों की तफसील। हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और अलाई बलाई फाउंडेशन की चेयरपर्सन बंडारू विजयलक्ष्मी ने लोक भवन में तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और उन्हें 22 अक्टूबर को मुनाकिद होने वाले अलाई बलाई सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। लोक भवन में गणेश मूर्ति विसर्जन से कबल गवर्नर शुक्ला ने भगवान गणेश की खसूसी पूजा की और तेलंगाना के आवाम के अमन व खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी के शशि किरण और दीगर अमल के अरकान भी मौजूद थे। खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र को हाईकोर्ट से धक्का लगा है। अदालत ने स्पीकर के अहकाम को रद्द करते हुए डी नागेंद्र को असेंबली की रुकनीत के लिए नाअहल करार दिया है। बीजेपी लीडर ए महेश्वर रेड्डी और बीआरएस रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी की अर्जियों पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने तबसरा किया कि नागेंद्र ने बीआरएस के टिकट पर इलेक्शन जीता था और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर उन्होंने 10वें शेड्यूल की खिलाफ वर्जी करते हुए साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया था। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को मुतला किया कि खैरताबाद की सीट अब खाली हो गई है। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली में बताया कि 22 ए अमलाक से मुतालिक तनाज़ात को तेज़ी से हल करने के लिए GORT नंबर 564 के तहत एक आला सतह कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की सदारत चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन DS लोकेश कुमार करेंगे। इसके अलावा एलबी नगर में 9700 प्लॉट्स के बाकायदा बनाने के लिए GO 118 पर अमल दरामद से मुतालिक मेमो जारी किया गया। सिंगारैनी में ज़मीनों को GO 76 के तहत बाकायदा बनाने और मंजूर शुदा लेआउट

कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज

पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि ये संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वैसे एकांत और अकेलापन को कई जगह एक दूसरे के पर्याय जैसे प्रयोग किया जाता है, दैट मीन्स दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। ध्यान रहे कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किस संदर्भ में व अर्थ में किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है। यहाँ एकांत का मतलब अकेला पड़ जाना या बिन सार्थकता से अकेले जीना मत समझ लेना। अकेलापन की अपेक्षा एकांत काफी अच्छा होता है। सुसंगति सत्संग सार्थक संगति है, एकांत से बढ़कर होती है। सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में अंतर समझते हैं। टाइम पास, बोरिंग, फुर्सत, अशांति जैसे शब्द आएंगे और शांति सुकून जैसे शब्द। टीवी, गेम, स्पोर्ट्स, अखबार, मैगजीन पढ़ना, सोना, मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट चाहते होना तथा समय का नाश अथवा दुरुपयोग कुछ सार्थक करने की अभिलाषा, जैसे कि आत्म परिष्कार, मंत्र लेखन, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य पठन, पौधारोपण इत्यादि। कई सकारात्मक चाहे होना तथा ध्यान साधन व अन्य सार्थकता में सामान का सदुपयोग। अतीत की स्मृतियां व भविष्य की अनिश्चितता के ख्याल, इसलिए तन से अकेले होकर भी मन में इधर उधर की बातें भरी मन को ईश्वर से मिलन की ओर लगाया जाता है। मन में कोई व्यर्थ काम नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर है। व्यर्थ के गतिरोधी से दूरी। दृष्टिकोण अथवा रूखे में विभिन्न के कारण कई बार ऐसा देखने में आता है कि सकारात्मक दब जाती है अथवा रचनात्मकता का परिष्कार संभव नहीं हो पाता है तथा परस्पर प्रतिकार एवं घोषित या अघोषित द्वंद्व में मानसिक ऊर्जा खपती है, जबकि एकांत में यह ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। ध्यान भटकने वाले कारकों से दूरी। मोबाइल व संगी साथियों से दूरी होना अपने आप में एक अच्छा अवसर का सृजन हो सकता है। एकांत में साधना, उपासना की ओर चिंता को प्रवृत्ति करना उपेक्षाकृत कम कठिन रह जाता है, क्योंकि कोई सामान्य संवाद करने वाला पास नहीं होता, कोई विरोध करना अथवा ठोकने वाला नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ध्यान खींचने वाला नहीं होता। इसके अतिरिक्त परिचितों की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उससे चर्चा के दौरान आने वाले नश्वर विषयों में हमारा जो ध्यान उलझता रहता है वो अब बच जाएगा। मानसिक दृढ़ता की दृष्टि से भी एकांत बड़ा अनमोल है। धर्म व सत्य के मार्ग में प्राय सर्वप्रथम

0: अपने ही अवरोध बनते हैं, अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं, सार्थक दिशा में चलने से पांव पीछे खींचने को विवश करते हैं तथा पवित्र परम उद्देश्य से दूर रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं एवं अपने अपने तर्कों से हमारा मन उनके पक्ष में ले लेने को आतुर रहते हैं। इस प्रकार शक्ति को बांटने से रोकना एवं इसे लगातार बढ़ाने में एकांत सहायक है। शाश्वत लक्ष्य निर्धारित करने, सतपथ पर अग्रसर होने में सहायता हो जाती है यदि एकांत हो तो। इस प्रकार कोई ऐसी बाहरी कारक एक्टिव नहीं रह जाता है जो हमें रोके या दबा रखे। परिस्थिति जनित थपेड़ों से भी काफी सीमा तक बचाव हो जाता है। आपने देखा पढ़ा भी होगा कि जितना भी सच्चे साधु संत रहे हैं वो नितांत एकांत प्रेमी रहे हैं, प्रसिद्धि व नगरों से दूर रहा करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो अपने निजी अथवा अन्य जटिल कार्यों के लिए अपने शिष्यों तक की सेवाएं प्राप्त करने से मना कर दिया करते थे। उनका आभा मंडल विशाल होता था। आभा मंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। लगातार बढ़ते कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद जरूरी भी, क्योंकि काफी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए। किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, जरूरी कामों के लिस्ट बनाएं। काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाए। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता आजीवन वे सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना या जो आपको एंकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन अ नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ఇంతవరకు మీరు లంహే ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విన్నారు.
2: నాటి మేటి సినీ గీత మాలిక మధురిమ అజరామరం అనిపించే గీతాలు.

0: कार्यक्रम सज रहा है जापान के आइची नयोगा में। लीजिए प्रस्तुत है आपके लिए इस रोमांचक सफर का कर्टेन रेसर।
1: एशियन गेम्स 2026 आइची नगोया।
2: जापान के आइची नागोया में एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच सज चुका है। इस बार 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों का दल 35 अलग अलग खेल स्पर्धाओं में देश का मान और तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इन भारतीय खिलाड़ियों के कंधे पर आइची नागोया में सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें ही नहीं हैं, बल्कि उनके सामने खुद का ही बनाया हुआ 28 गोल्ड समेत 107 मेडल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ पार करने की भी बड़ी चुनौती होगी। खास बात यह भी है कि भारतीय दल में 300 से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रख रहे हैं। उन्हें यह साबित करना है कि भारत की नई पौध दबाव में बिखरती नहीं बल्कि निखरती है। औपचारिक रूप से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इस खेल महाकुंभ में हमारे एथलीटों की नजरें एशिया के टॉप 3 देशों में जगह बनाने और कई खेलों में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट पक्का करने पर भी टिकी हैं। भारत जिन खेलों में भाग ले रहा है उनमें तीरंदाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड की अलग अलग स्पर्धाएं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ई स्पोर्ट्स, तलवारबाजी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवंस, सेलिंग, सिपकटेकरा, शूटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्क्वाश, सर्फिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेक बॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। एशियन गेम्स में इस बार भी एथलेटिक्स में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। 70 से अधिक सदस्यों वाले एथलेटिक्स दल में 30 से अधिक पुरुष और करीब 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार भारत ने 6 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते थे। इस बार भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के भारत की बड़ी उम्मीद गुरिंदर वीर सिंह बिल्कुल तैयार है। दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: हर कंपटीशन लाइक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है। हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं। बट हाँ, होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
2: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है।
4: देखिए, एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
2: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
5: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अच्छा करेंगे।
2: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार रही। दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से।
6: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा।
7: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है
6: जी,
7: यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रांगेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहेंगे भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन, तो इसमें मैं

0: जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली भी, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है। वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा। वी शुड विन द एशियन गेम्स।
1: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में। सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
0: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकते हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम।
2: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है। भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी।

0: a big achievement for the women's team.
1: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है। भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी। उनके सामने अपने पिछले रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है। भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही हैं कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है।
2: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं। एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है।
1: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय दल की उम्मीद होंगी, वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
3: टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था।
1: और अब बात शूटिंग की। इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने हांगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है। टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनन चिनाई। केनन, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, हांगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
4: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा था। इस बार पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा, तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए।
1: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था। पिछली बार वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
4: सर, वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है। जो भी कंपटीशन में गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है। लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर। वो मेरा सेकेंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे सर।
1: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कॉन्स्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
4: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन से नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे प्लानिंग करेगी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगा, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा, टारगेट्स पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एम्यूनेशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होते रहते।
1: और किरण, पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी, इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
4: सर, ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल। आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन बीटिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड गेनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री। शॉटगन टीम ऑल्सो इज कमिंग अप वेरी वेल, वी हैव अ यंग टीम गोइंग दिस टाइम, सो I think what I've seen at least in the camps and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
1: भारत का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे, इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
5: देखिए, हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं, और काफी स्ट्रांग टीम है जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
1: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें तो पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान दीपक पूनिया और रजत रूहल की चुनौती होगी। महिला फ्री स्टाइल में अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम।

0: मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे तीन पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
1: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
2: कितना जोश है?
1: फुल 100 of 100।
2: कितने मेडल आएंगे?
1: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने ही मेडल आएंगे हमारे।
0: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
1: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो यही है।
0: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
3: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है, सब यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
2: जो जापान कोरिया की जो डर था वो निकल चुका है, उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
3: नहीं सर, कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट हैं, इंडिया सबसे बेस्ट है।
0: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
4: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अब की बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
2: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
4: राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
2: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
4: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
0: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
5: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे, और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
0: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है, अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5 के 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर प्रतीका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
6: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पर फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सारे ही मेडल आए। इस बार सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चल रही है, सो विल डू आवर बेस्ट।
0: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोद भी मान रही हैं।
7: एशियन गेम्स में उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है, और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
0: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलटफेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं, वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं, हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
8: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू इन मिट बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड पेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट, एंड That's the only thing we want to do, like not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we do really well.
0: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी में टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानुष शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, दिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से

0: बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
1: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंसेस है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में, एंड अभी इस साल में फिर बात करूँ क्यों डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं, एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले एशियन गेम्स के लिए, एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम्स जाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोज, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे कैसे आएंगे, यू कैन नॉट, मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
0: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है। साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह?
2: So I'd love to change the color of the medal. It'll be great to, you know, be able to go up a step. But of course, the competition's a lot. There's a lot of different players from different countries who are in the top in the world right now. But I mean, hopefully, I'm able to do something and I'm able to train hard towards the Asian Games and do well.
0: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
3: अभी इस एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी होप हम 7 एथलीट्स जा रहे हैं और मे बी हम 5-6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे, इस बार पूरा कॉन्फिडेंस है हमें।
0: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया, इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखिलबम की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही हैं।
4: अभी मैं यही माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ, बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं जरूर लेके आऊंगी।
0: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है, इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।
5: की बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15, पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
0: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
6: आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 इयर्स, मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में, एंड यस एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है, हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था उसमें हम लोग 2nd आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
0: एशियन गेम्स में टेक बॉल का डेब्यू हो रहा है, ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है, इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है। उन्होंने विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया, अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह गई हैं। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईची नागोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह तूर आईची नागोया में भारतीय दल के फ्लैग बेयरर होंगे, ये इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका है और जो ये फैसला लिया गया है ये कितना अच्छा है?
7: नमस्कार, आपका ये जो सवाल है, देखिए फ्लैग बेयरर एक देश के लिए बनना वो किसी भी खिलाड़ी के लिए कितना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है। और जब इनको, जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया, ये कितनी अच्छी बात है। मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली यंग जनरेशन के।

0: बीच तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेंजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए। और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेरर बन के आईची नगोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
1: और इस बार संख्या की बात करें तो भारत का दल छोटा है, लेकिन पदक की जो उम्मीद है वो पिछली बार से ज्यादा की जा रही है। इसकी आखिर क्या वजह है?
0: देखिए, जब एक कंटिंजेंट जाती है हमेशा यही सोच रहता है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे, पर खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार से ज्यादा होगा या कम। इस बार जैसा कि आपने कहा कि कंटिंजेंट छोटी है, पिछली बार के मुकाबले ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिंजेंट है। तो जब कंटिंजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा, ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है, जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे। अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे, और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते हैं। मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे।
1: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं। इस बारे में सोच क्या रही है?
0: देखिए, ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही चार गिने चुने नाम आते हैं हर स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कि बस यही लोग हैं जो शायद मेडल ले आ पाएंगे। बट इस बार जैसा आपने कहा कि 501 में से 310, विच इज लाइक अराउंड 63% ऑफ द टोटल कंटिंजेंट आर गोइंग टू द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रहे हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो किसी भी एक इवॉल्विंग स्पोर्टिंग नेशन के लिए बेहद जरूरी है, तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में हम हमेशा वही रहता है, जोशना चिनप्पा, सौरव घोषाल, यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है। हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री कि हम सही दिशा में जा रहे
1: जी,
0: हैं।
1: और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं, और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। इस बारे में भी कुछ बताएं आप।
0: देखिए, 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले। इस बार का जो खेलो इंडिया का बजट है वो 10 टाइम ज्यादा करके 36,000 करोड़ कर दिया गया है। तो पैसा तो डेफिनेटली खर्चा किया जा रहा है, इस बार का भी जो हमारा बजट है वो 702 करोड़ रुपए है, पर मुझे लगता है कि पैसा खर्चा कर रहे हैं ये तो सही है, पिछले कुछ 10 सालों से कर ही रहे हैं, पर सही जगह पैसा खर्चा करना, जो एथलीट की नीड है वहां पे सपोर्ट देना और सही टाइम पे देना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। CWG में भी किया था जिसके वजह से आपने मेडल्स का टैली आपने देखा कितना बड़ा। एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो यूएसए में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में। टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में, वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे, रेसलिंग

0: स्पारिंग रशिया और उज्बेकिस्तान, क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है, शूटिंग वाले इटली में थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है, बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए। एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले, फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दे, वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो साइकी कोचेस है, जो इंडियन कोचेस है, वो तो उनको ट्रेन पूरी साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, जिसमें से मान लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है। कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेस, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉरेन कोचेस उनकी इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उनको हम लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा।
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ी को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में, उस पर भी काफी कुछ किया गया।
0: देखिए, एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना, वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस, क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए, पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहां पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर, उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एथलीट के लिए भी चीज वही है। हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनफ नहीं है, तो हम इसलिए जो एथलीट्स है उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स, और बहुत सारे वहां पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहाँ पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वही वो लोग सोते थे, वही वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी, तो वो सब वो लोग वहाँ पे करते थे ताकि वहाँ पहुँच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहाँ आ गए।
1: हेमिका, स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बुहरा अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब के खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइया को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ दलों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने इलाकाई अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में मुसलसल तआवुन और इश्तराक के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन

0: फ़ोन मौसूल हुआ जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इकदाम के बारे में भी गुफ्तगू की। इसमें तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सेहत जैसे शोबे शामिल हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने भारत की कामयाब ब्रिक्स सदारत पर वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में वलीहद शेख खालिद की शिरकत और भारत की सदारत के दौरान अहम नतायज हासिल करने में यूएई के तआवुन और शराकत दारी को भी सराहा। यूएई के सदर ने वज़ीर आज़म मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इस मौके पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए तकर्रुर पाने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी तकरीब से खिताब भी करेंगे। नई तकर्रुरी पाने वाले उम्मीदवार भारत सरकार की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमात अंजाम देंगे जिनमें महकमे महसूलात, वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, वजारत सेहत व खानदानी बहबूद, मालियाती खिदमात का महकमा और वजारत दिफा समेत दीगर इदारे शामिल हैं। भारत ने बुहरे अहमर में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के खुद मुख्तार इलाके पर हमलों की मजम्मत की है जिनमें शहरियों और इकतसादी असासों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकदस शहर मक्का पर हुए हमले की कोशिश के बाद भारत ने बयान जारी किया था। पाकिस्तानी बहरी जहाज और भारतीय बहरी जहाज के दरमियान हुए तसादुम के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने एहतजाज पर पाकिस्तान के रद्दअमल का नोटिस लिया है। जनाब जायसवाल ने पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्जाम और धमकियों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज हुनैन के जरिए खतरनाक तरीके से आगे निकलने की कोशिश फौजी मशकों, कलाबाजियों और फौजी नकलो हरकत के एडवांस्ड नोटिस से मुतालिक भारत पाकिस्तान के 1991 माहदे के आर्टिकल 10 की सरीह खिलाफ वर्जी है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज ने समंदर में टक्कर से बचने से मुतालिक बैन अवी जब्तों की भी खिलाफ वर्जी की है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि योग मौजूदा दौर में बढ़ते हुए जहनी तनाव के दरमियान जिस्मानी और दिमागी सेहत, ध्यान, खुद आगाही और जहनी तवाजुन को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर सकता है। नायब सदर ने यह बात महाराष्ट्र के लोनावला में कैवल्य धाम में गोवर्धन दास सेक्सरिया कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस की प्लेटिनम जुबली तकलीबात से खिताब करते हुए कही। जनाब राधा कृष्णन ने योग की तालीम, तहकीक और सकाफती मुतालात के दरमियान मजकूरा इदारे की 75 साल खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कैवल्य धाम के बानी स्वामी कुवल्यनंदन ने 1924 में योग के साइंसी मुताले की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि योग महज एक नस्ल की रिवायत नहीं है बल्कि एक ऐसा विरसा है जिसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों और अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिए जाने के बाद योग को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका ये सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अनथक अज़्म से इबारत है जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इस नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत हम नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के जरिए इस नज़रिए को अमली जामा पहनाए जाने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीति आयोग ने यकुम जनवरी 2015 को काबीना की एक करारदाद के जरिए प्लानिंग कमीशन की जगह ली। इसे फंड फ्राहम करने वाले इदारे के बजाय पॉलिसी साजी के इदारे के तौर पर तश्कील दिया गया। नीति आयोग के 3 अहम अज्जा हैं। गवर्निंग काउंसिल, वजीर आजम और तमाम वज़राए आला को एक ही प्लेटफॉर्म

0: फॉर्म पर यकजा करती है। रियासतों को ताउन फ्राहम करने से मुतालिक मिशन नीति आयोग की टीमों को रियासती हुकूमतों के अंदर काम करने के लिए तैनात करता है। उमंगों वाले अजला प्रोग्राम जिलों की कारकर्दगी को मुकर्रा पैमानों पर जांचता है और नतायज शाये करता है। 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मोदी ने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरकज और रियासतें एक टीम के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
0: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग के क्याम से ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग मिला है और ये मरकज रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिकमत अमली और तकनीकी मशवरे फराहम करता है।
2: नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आया है।
0: नीति आयोग अब भारत सरकार के अहम पॉलिसी थिंक टैंक और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मजबूत रियासतें अब एक मजबूत मुल्क की वाज़ह बुनियाद बन चुकी हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई जहाजों के सरकारी मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने ट्विन सीटर हल्के जंगी तैयारे तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय फिजाइया को सौंपा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने इससे मुतालिक तकरीब में शिरकत की। HAL ने दो तेजस और तरबियती तैयारे भारतीय फिजाइया के हवाले किए। वहीं HAL ने अगली नस्ल के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड को सौंपा। इसके अलावा HAL ने पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा भी भारतीय फिजाइया के हवाले किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को अंकुर का नाम दिया।
4: आज हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
3: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर खुद इन्हेंसारी पर जोर दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भारत इस शोबे में आलमी कायद के तौर पर उभरेगा। जनाब सिंह ने स्वदेशी दिफाई और शहरी आवाबाजी टेक्नोलॉजियों की कोशिश के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सताइश की। जनाब सिंह ने नौजवान इंजीनियरों और डिजाइनरों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चैलेंज को कबूल करने और भारत को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने में मदद करने की अपील की। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि निजी और अवामी शोबे को हरीफ बनने के बजाय शराकतदार के तौर पर काम करना चाहिए। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई पैदावार और बरामदात में खातिरखा इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज IBM सेमीकंडक्टर के जनरल मैनेजर डॉक्टर मुकेश खरे से मुलाकात की। ये मुलाकात आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के तनाजुर में हुई। इस दौरान दोनों ने भारत की चिप डिजाइन तरजीहात, जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के मौके और भारत में एडवांस्ड चिप साजी के से मुतालिक IBM के मंसूबों पर तबादले ख्याल किया। जनाब वैष्णव ने LAM रिसर्च के COO सेशा वर्दराजन से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम करने के कंपनी के मंसूबों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हरीफ धड़ों को नए नाम और नए इंतखाबी निशानात अता किए। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी اور اروپ رائے کے زیر قیادت دھڑے ضمنی انتخابات میں نئی شناخت کے ساتھ حصہ لیں گے۔

स्वरूप राय के जेर क्यादत ग्रुप को नया नाम डेमोक्रेट तृणमूल कांग्रेस दिया गया और उनका इंतखाबी निशान लिफाफा होगा। वहीं ममता बनर्जी के जेर क्यादत दूसरे ग्रुप का नाम बदलकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा गया है, जबकि उनका इंतखाबी निशान एक फुटबॉल खिलाड़ी होगा। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ताहम ये रियायत इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की हद से ज्यादा रखा जाने वाला चीनी का जखीरा सिर्फ पेशगी मंजूरी स्कीम और टेरिफ रेट कोटा के तहत दरामद की गई चीनी से हासिल किया जाएगा। सारिफिन के उमूर, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत ने कहा कि खुली मार्केट से खरीदी जाने वाली चीनी के जखीरे की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये सिर्फ 15 दिन की खपत तक महदूद रहेगा। ये फैसला हुकूमत की जानिब से चीनी के बड़े ग्राहकों के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम मेजबान जापान को 8 विकेट से बआसानी शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशिन में आज खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया। इस क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 19 ओवर्स और 5 गेंदों में जापान की पूरी टीम को महज 57 रन पर आउट कर दिया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों श्री चरनी ने 4 विकेट और शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर यह निशाना हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 40 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला निची नागोया एशियाई खेलों के दूसरे सेमीफाइनल में इतवार के रोज बांग्लादेश से होगा। वहीं पहला सेमीफाइनल उसी रोज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान और निकोबार जजायर और शुमाल मशरक भारत के कई हिस्सों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल से मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के रुख्सत होने के लिए हालात साजगार हैं। दिल्ली के लिए महकमे मौसमियात ने कल मौसम के जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्ज हरारत 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बुहरा अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब की खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइयों को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए हैं। और इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन।

मैं कितनी बार बोला ना जी उजला कपड़ा पहनो ना को काला कपड़ा पहनो ना को उजला कपड़ा पहनो ना को मेरे दम से तू सुहागन सर से पा

0: మై కిట్టి బారు బోల నాడి ఉజల కపుడ పీను నక్కు కాల కపుడ పీను నక్కు ఉజల కపుడ పీను నక్కు.
1: दोस्तों शबाना आजमी हिंदुस्तानी फिल्मी पर्दे की वो अभिनेत्री है जिसने अदाकारी के वो जौहर पेश किए हैं जिन्हें सिर्फ बेमिसाल ही कहा जाएगा. ये बात जग जाहिर है कि वो एक उम्दा शायर कैफिया आजमी और इप्टा की जानी मानी कलाकारा शौकत आजमी की बेटी है, मशहूर सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी की बहन और गीतकार शायर जावेद अख्तर की शरीक हयात है.
2: दिल

दोस्तों 1972 के आसपास FTII से शबाना आजमी ग्रेजुएट हुई और अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए ही एक्टिंग की दुनिया में जलवागर हुई। अब्बास साहब की एक फिल्म फासला में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली भूमिका की, हालांकि ब्लेज फिल्म्स की पेशकश अंकुर पहले रिलीज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं शबाना आजमी द्वारा अभिनीत एक फिल्म अर्थ का ये बड़ा ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों, शबाना आजमी ने कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है। उनमें से प्रमुख हैं श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, मंडी, सुस्मन और अंतरनाद। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन के साथ खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, ये फिल्में उन्होंने की। सईद मिर्जा की फिल्म उन्होंने की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। गौतम घोष की पार उन्होंने की थी। सई परांजपे की स्पर्श और दिशा, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म अवतार के इस गाने के साथ।

दोस्तों, शबाना आजमी द्वारा अभिनीत फिल्मों की एक फहरिस्त पर हम जब नजर डालते हैं तो पता चलता है कि किस किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं। 1988 में मैडम सोजार्ट्स का, 1992 में आई थी सिटी ऑफ जॉय, 1993 में इन कस्टडी, 1993 में ही एक और फिल्म आई थी उनकी सन ऑफ द पिंक पैंथर, 1996 में फायर, 1997 में साज़,

1998 में अर्थ, 1999 में गॉड मदर, 2002 में उनकी फिल्म आई थी मकड़ी, तहजीब आई थी 2003 में, 2004 में मौनी रागाज, 2005 में 15th पार्क एवेन्यू, इसी साल यानी 2005 में आई थी वाटर बॉर्न, 2006 में उमराव जान, 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड।

इसी साल यानी 2007 में लायंस ऑफ द पंजाब प्रेजेंट्स, 2008 में उनकी फिल्म आई थी सॉरी भाई, और 2010 में इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ। शबाना आजमी मटरू की बिजली का मंडोला इस फिल्म में भी नजर आई थी। दोस्तों, शबाना आजमी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शबाना आजमी पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: इश्क से कह दो कि